0: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
1: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबू।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामों का बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: That's it, Jim Reeves, because it'll be Daddy, it's Father's Evening, 19 hours 40. Oh, Mayday Papa, the great, from the movie, the great Papa.
1: तुम्हें पता मैं यहाँ का इंजीनियर हूँ और तुम्हारे जैसे सैकड़ों मजदूर मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं और तुमने बीड़ी पीने के लिए बोझा मेरे सर पे रख दिया। अगर मैंने बॉस को कंप्लेंट कर दी तो जानते क्या होगा?
2: क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन शाम को जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ पैर चले जाएंगे। सोच लीजिए।